0: रंग जो है वो जागृति का रंग है। काय का रंग है?
1: जागृति का।
0: हाँ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमें अंधकार की ओर से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाए। तो ये रंग जो है प्रकाश की ओर ले जाता है।

0: found the time to visit a school for children with hearing and speaking problems, deaf and mute children. The arrival of a yogi always offers something that can help.
1: Very good. बहुत अच्छा है. तो इस प्रकार की तीन चार और अलग अलग क्रियाएं हैं और साथ ही साथ वो वेजिटेटिव नर्व सिस्टम्स जो है, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक एंड सेंट्रल नर्व, तो उसमें कुंभक के द्वारा प्राणायाम, विशेष कुंभक होती है. उस कुंभक से क्या होता है कि कुछ नाड़ियों का यहाँ खुल जाना होगा, सेंट्रल जो केंद्र है वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाता है.
0: This is how our days in Jodhpur passed, between sadhana, humanitarian work, and satsang.
1: और उस हृदय काश के अंदर, कमल के अंदर में एक छोटी सी गुफा है और उस गुफा के वो अंदर वो जो क्लोज, इट इज ए क्लोज ग्रंथि है या मांसपेशी है, विधीन उसके अंदर में एक स्पेस जो है गुफा, और उस स्पेस के अंदर का जो वो गुफा के अंदर की जगह जो है, वो स्पेस है, उसमें जो समाया हुआ है वह आत्मा है.
0: Spontaneity is a precious Hindu quality. This poet composed an ode to Swamiji on the spot.
2: मन मारा ज्ञानी गुरु एड़ा मिलिया मन मारा सत्य

0: Even though physically absent, Guruji was inevitably the centre of all attention. The photobiography of Guruji's life was solemnly presented.
1: Swamiji, Madanaji Maharaj Sahib to aaj hamare beech mein nahi hai kyunki wo saath labh kar rahe hain se bataya gaya par unka sandesh hamare beech mein hai aapke beech mein hai lambe samay tak kaise unhone wo kaam kiye jisse ki aatmik sukh mile आत्मा को शांति मिले सद्भाव का वातावरण कायम हो एक लंबा जीवन उन्होंने बिताया और किस प्रकार से वे समाज को देश को दुनिया को संदेश देते गए ये सौभाग्य है पाली जिले का देशुरी तहसील का और निप्पल गांव का जहाँ वो पैदा हुए उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिध्य में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आप सबके सामने है।
2: टुडे विद अस लार्ज नंबर ऑफ अवर फॉरेन फ्रेंड्स आर ऑल्सो हियर आई वुड लाइक टू एक्नोलेज देयर डेडिकेशन टू दिस इंस्टीट्यूशन आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फार्मर्स हियर दैट लुकिंग टू योर डिवोशन it's really appreciable and it is amazing. It is beyond our thought and thinking.
3: तो बाबूजी मन से यहाँ हैं तन से वहाँ हैं गुरुजी हमेशा यही कहते हैं नशा पत्ता छोड़ो जाति पाति का भेदभाव छोड़ो सर्व धर्म का सम्मान करो जिससे कि विश्व शांति बनी रहे प्राणी मात्र की रक्षा हो और मानव का भी कल्याण हो बोल श्री दीप नारायण भगवान की धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की
0: Today, our stay in India has come to an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul, and the soul of that home is a Gurudev. His word comes from an eternity and lasts for an eternity.
4: God is endless, and His glory is endless. He is beyond our imagination, beyond the borders, and beyond everything.

श्रीदीप नारायण भगवान की जय, श्री देव पुरुष महादेवा की जय, स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय, श्री अलका पुरुष महादेवा की जय।

0: बोले श्रीदीप नरयाम भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय।
1: गुरुदेवा की जय। श्री मीराबाई जी की जय।

जय श्री सतगुरु देवा की जय देव पुरी जी महादेवा की जय सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरु देवा की जय श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय भारत माता की जय।

0: जय हो।
1: समय बड़ी कीमती है भजनो सजनो, मारो एक ही भजन है क्यों आप प्रचार करें साम्राज्य गौ माता रो। ये नर्तन जो तुझको मिला है यूं गमाने के काबिल नहीं है, हर सांस अनमोल हीरा है यूं लुटाने के काबिल नहीं है। गाय जिंदे जी सेवा कमाए, गाय जिए जीते दूध देवे, दही देवे, घी देवे, गोबर देवे, गोमूत्र देवे, और मरने के बाद भी उसका हड्डी और चमड़ी काम आवे। मिनख मूंगो जान राखे मिनख पणो, मिनख मूंगो जान राखे मिनख पणो, सब जीव आप समान जाने आप तणो, गुण बिना पशु समान अजिया गलतनो। मिनख मूंगो जान राखे मिनख पणो। तो गाय जिंदे जी सेवा कमाए, मरकर भी काम आए, नर तेरा जिस्म मरने के बाद काम आने के काबिल नहीं है। इंसान को गणित समय को टाइम इज मनी, समय धन है। क्यों मैं एक भजन रखी हो आपने, इंसान को इंसान होना नहीं आया। हंसते तो सभी खिल खिल, पर दूसरों के दर्द पर रोना नहीं आया। बाहर से कपड़ा सभी धोते हैं, अपना अंतकण धोना नहीं आया। भर पेट तो सभी खाते हैं, आगे के लिए कुछ बोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, मगर आज तक गोना नहीं आया। यानी सद्बुद्धि को नहीं आई, गाय के प्रति आस्था को नहीं आई। भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में, भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में।

0: गड़कर के निज देव बिठाया तुम्हारे सीने में, इसको छोड़कर लगे हैं मृग जल को पीने में, अंतर आत्मा को छोड़ भटकते काशी मक्का मदीने में। सुजनो भगवान ने दी ऐसी सुंदर काया, तेरे लिए क्या क्या बनाया, पर तू उस दाता को भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। कुकर्मों में लट्टू एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा, गौ माता के प्रति कोई संत आश्रम में, कोई अनाथ आश्रम में कोनी पैसा खर्च रहे, दुर्व्यसन में पैसा खर्च करे लोग। कुकर्मों में लट्टू एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा, ये मिले अनमोल बिना मोल सत्संग, पर तू इसमें जाने के काबिल नहीं है। बरा ये सत्संग का दरिया नाइलो जिसका जी चाहे, जिगर है दाग पाप का धोइलो जिसका जी चाहे। झूठ बोले गप्पे उड़ाए गंदे गीत मस्ती से गाए, भगवान का कीर्तन कौन करे, सदगुरु का गुणगान कौन करे, अशुद्ध गीत गावे, मुनि बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। झूठ बोले गप्पे उड़ाए गंदे गीत मस्ती से गाए, अब ये तेरी जीभ प्रभु के गुण गाने के काबिल नहीं है। हाँ सोच ले एक दिन रोना पड़ेगा, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। सोच ले एक दिन रोना पड़ेगा, नरकगामी होना पड़ेगा, होगा जो तेरा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। फालतू सिर पर बोझ लिए फिरते, बार बार जन्मते और मरते, तेरा मस्तक हो गया इतना बोझिल जो संतों के आगे झुकाने के भी काबिल नहीं है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है, सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है, पर तूने माँ बाप की सेवा नहीं की तो तू दुनिया में आने के काबिल नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो, दिल में दया आंख में शर्म होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो, दिल में दया आंख में शर्म होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी में जीने का यही तरीका है दोस्तों, ने तो खुद उदास रहो और ने दूसरों को उदास रहने दो। हो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए, मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना अगर जिंदों में है, वो जिंदगी क्या काम की जो अपना जीवन नहीं बदल दे। जिंदगी में जीना है तो जीने की यकीन कर, सूरज आसमान पर इसे ले आ जमीन पर, एड़ा सत्य कर्म कर, माता पिता की सेवा कर, गौ माता की सेवा कर, तो सूरज तारा पहुंचू मैं। यूं ब्रह्मानंद समझावे, बार बार नर्तन नहीं पावे, ऐसे सु अवसर को गमावे तो तुम मोक्ष पद पाने के काबिल नहीं है। खूब महापुरुष पधारिया, समय बड़ी कीमती है, टाइम इज मनी एंड मनी इज गोल्ड। अब मैं इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गौ माते की
1: जय हो।
0: साध्वी जो को पधारिया वारू, आप जो मन संचरण करना, जो आपने नाम लेवे, जो आप भजन सुनता रहे, जो साध्वी जी आप खूब भजनी पधारिया, आप अपरा विचार रखिए, आप अपरा प्रवचन, आप अपरा भजन। बोलो राम जी महाराज की
1: जय हो।
2: सर जाना नहीं है, बैठना है। दो
1: जय हो। आप रो कहना मान है।

0: अनंत कोटि के महापुरुषों की
1: जय हो। अमर वे गया, अमर वे गया।
0: जो मरा श्री अब मन संचालन जो इज्जत दे स्वकृति दे त्यों भजन सुनावता रहे लोग आप प्रेम सुनता रहे जो
1: जय बोलो गोमाता की।
0: यूं है गौ माता है नी गौ माता जकारे घर में गौ माता है और जकारे घर में तुलसी को पौधो है जकां के घर गुरु महाराज की मूर्ति है वो ही घर हिंदू धर्म की संस्कृत में सनातन धर्म में गिनती में आवे और जकां के घर में गाय नहीं है तो सुजनो घनी व्याख्या नहीं करूं मैं थोड़ी सी भजन गाऊं नाला ज्यादा है टाइम इज मनी मैं आप बात बार बार क्यों कि समय दनेर में ही ज्यादा बेलड़ा उड़ो दन उचित कौन लागे छोटी सी बात है बड़ी मार्मिक बात है जीवन में काम आवेला। राजा भरतरी जिन टेमरा जोग ले राजपाट ने परित्याग कर दियो राजा भरतरी चक्रवर्ती सम्राट हो
1: जय हो।
0: गोपी चंद और राजा भरतरी मामो भांजा हा तो राजपाट ने उजीन नगरी ने परित्याग कर वन में निकल गो। भगवान भी परीक्षा लेवे स्कूल में बच्चों पढ़े मेरी मास्टर परीक्षा लेवे अर्धवार्षिकन वार्षिकन परीक्षा में पास रहे तो अगली क्लास में एडमिशन है फेल रहे तो एडमिशन नहीं है तो वीनी तेरे भगवान भी परीक्षा लेवे कि इरो वैराग्य सच्चो है या कच्चो है। तो सजनों महीना डोड़ महीना तक राजा भरतरी ने अन्न कोन मिलियो महीना डोड़ महीना तक हाँ वो वन में फल फूल जी में और नदी सरिता में पानी पियर भजन करे जिसके लागी नाम की नैन बेण कह देता है। एक दिन संयोग को बड़ी मार्मिक बात है ध्यान एक दिन संयोग भी ने सुको रोटी को टुकड़ो मिलियो चार आंगल वो क्यों आज अन्न देव भगवान दर्शन दिया है आज आप भोजन करा जबकि 45 दिन तक अन्न को मिलियो 45 दिन तक वो प्रेम भी भोजन ग्रहण करन पाचो भजन में बैठो तो भी नगरी को एक शासन करने वालो राजा हो आपरा कामदार ले वन में घूमने वास्ते गियो वो राजा भी राजा भरतरी ने सुको टुकड़ो ने खावता देखियो जन आपरा कामदार ने कियो ओ कोई मगतो है कोई भिकारी है सुकोड़ो टुकड़ो कोई देन किया बढ़िया कहीं टकूनी लाया जो कोई तो खावे इर्दी तो कोई मगतो ही कोनी भूखा मरे है ते जा इने कह दो के माने राजा के दरबार में चलो मां के राजा का गढ़ में चलो तने दपाई जिमाई दे वहां भरपेट भोजन करो क्योंकि तुम भिकारी वो कामदार जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म है आठा कोनी कोई राजा है लेकिन उसे मालूम नहीं था वो जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म है तुम भूखा मरे तुम भिकारी है मैं तो उनका हूँ भिकारी हृदय की जोड़ी भक्ति का देन दान मैं मांग रहा हर वारी मैं उनका हूँ भिकारी मेरी मोक्ष उसी दिन हो गई जब गुरु मिले शुभकारी अब आवे तो मैं सबकी कर दूं चाहे आ जाए जग सारी मैं उनका हूँ भिकारी बात मत ओटला तुम भूखा मरे तुम हाल माने गढ़ में जीम ले थारा राजा ने पूछ के मने क्यों जिमावो और राजा साहब वो निमंत्रण स्वीकार कौन करे बोध के मने क्यों जिमाओ अरे क्यों कहीं जिमाओ राजा ने धर्म रे जकाऊ जिमावे तुम भिकारी है तुम मगतो है तुम भूखा मरे धर्म रे जन थार राजा ने जाय पूछ के धर्म की माँ कौन है धर्म री माँ कौन है अरे वो स्वीकार कौन कर बो के धर्म री माँ कौन है वो राजा भी बुद्धिजीवी हो बो की धर्म री माँ है दया मन थर माता दया आई जनी तुम्हें जिमाऊ वा जन तर राजन और जाय पूछ के जन धर्म रो बाप कौन है अरे राजन वो माने कौन बो के धर्म रो बाप कौन है जन वो सोच ली मन में आप इन भिकारी समझा भिकारी तो कौन आ तो चीज तो कोई हीरो तो कोई दूसरो ही है जाय देख के बीरो नूर पहली मराशी रेट वाई क्या करी नहीं वो भगवा बेग एक अग्नि है इमे सब चीज जले ई वास्ते बिरु नूर अबार आला साधु संत के में कोई आलोचना तो कौन कौन आगले संत महात्मा बसम लगावता शरीर के बसमी ताकि शरीर भूंडो लागे डाडी यूं बड़ा अवता ताकि कुरूप दी के शरीर बने शरीर ने भी सजावता कोनी बबूती लगाई ली तो बीरो नूर बीरो तेज कोई छानो थोड़ो यो तारों की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं सूर्य छिपे नहीं बादल छाया रण चढ़े सूरवीर छिपे नहीं दातार छिपे नहीं गर मंगत आया चंचल नार का नैन छिपे नहीं प्रीत छिपे नहीं पूट दिखाया ये योगी का बाना अनेक करो पने कर्म छिपे नहीं भभूत रमाया जाय प्रणाम करण की ओसा धर्म की माँ है दया और धर्म को बाप है संतोष क्यों जन राजा मनी चार अंगल टुकड़ा में संतोष है जो दस बीस पचास बयसत हो हजार तो लाख मंगेगी जो दस बीस पचास बयसत हो हजार तो लाख मंगेगी कोटि के अरब खरब बये तब धरापति होने की चाह जगेगी उदय अस्त लो राज मिले तो तृष्ण अधि की आगे लगेगी सुंदर एक संतोष बिना सेठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी तो संतोषम परम सुखम गुरु का वचन सदा सिर ऊपर अखे अमर धुन लागी मच्छंदर प्रताप जति गोरख बोले वो जोग लियो बड़ भागी भरतरी राजा भूप भयो वेरागी इतना कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ अचानक में कोई आ जाए उसे मेहमान कहते हैं भूख में कुछ मिल जाए उसे पकवान कहते हैं करे किसी निर्धन की मदद उसे धनवान कहते हैं करे जो गौ माता की सेवा वो महादान कहते हैं करता जो माँ बाप की सेवा उसे संतान कहते हैं जिन्होंने अपने आप को जान लिया उसे इंसान कहते हैं आर्ट इज लाइफ
1: जय हो ढोलक वाला पधारा ने ढोलक हाँ ढोलक बजावा ढोलक

हेलो प्रथम प्रणाम गुरु आपको दूजी बार हम अवतार तृतीय मम माँ बाप को तो सतुजन सब संसार बोलो दीप नारायण भगवान की जय हो देव देव पुरीसा महाराज की जय हो महात्मानंद जी महाराज की जय हो स्वामी श्री मेश्वरानंद जी महाराज की जय हो सत स्वागम कीजिए और तजिए लो भयंकार भूल सुख परिधिरे अण सत्री संगत रे माय तप का वर्ष हजार है और सत्री संगत पलये इनके बराबर पहुंचे नहीं सुखदेव किया विवेक बोलो सतगुरु भगवान की जय।

दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन।

Population, as you know, in India is huge, as I told in the beginning. So we are, Swamiji, trying very hard. It's, of course, very difficult because everybody wants to have computers. Everybody wants to study, to have experiments with the chemistry or physics and so on. So this is quite, of course, it's a costly matter to pay the teachers. If you have good teachers, they require more money. If you have good equipment, this requires money and so on. So that's why we are thankful to all the supporters, all the donators who gave the money for this project of Gyanputra. अब आपके पास अब स्कूल में जाते हैं आप स्कूल का समय हो गया चालू भी हो गए आप मैंने आपके सामने बैठ रहे तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं एक जगह में बैठ नहीं सकते नींद तो आती रहती है अभी तो 9 बज गए तो शायद जाने की समय है या स्टडी का समय है यहाँ का प्रॉब्लम है जनरल पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है स्टडी में कि सब लोग जनरली बच्चे सोच रहे हैं कि स्टडी का क्या मतलब है एग्जाम तो आएगा दिसंबर में जब एग्जाम आएगा मार्च में एग्जाम आएगा अप्रैल में अभी क्या स्टडी करना तो आप ऐसे कीजिए 365 दिन है आप आज 6 महीना के लिए खा लेना एक दिन में 4 रोटी आप लेते ठीक है सुबह 2 शाम को 2 ठीक है मांगे चलो 5 रहते 6 लेते तो 6 महीना में कितना दिन होगा 180 दिन 180 दिन में 5 रोटी एक दिन का हो गया कितना 900 रोटी तो ठीक है आज सुबह हम बना देंगे भंडारा 900 रोटी सबको खानी है फिर 6 महीने आप फ्री हो गए खाने से संभव है इतनी मामूली चीज है अब क्या है 900 रोटी खा लीजिए क्या है कोई खास नहीं है 6 महीना का आपकी भूख नहीं लगेगी ऐसे नहीं चलता है ना तो अगर ऐसे नहीं चाहते आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी 365 दिन की पढ़ाई कर सकते हैं पूरी 6 महीना की पढ़ाई कर सकते हैं एक रात में वो एक रात भी नहीं 2 घंटे में अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में 11 बजे समाप्त सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे संभव है या नहीं बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल तो पढ़ना होता है रोज डेली तो पढ़ाई टुकड़ों में होता है जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं हर दिन 5 रोटी खा सकते कोई टेंशन नहीं 10 रोटी भी खा सकते हैं लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते ओपन स्टडी करते 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं अगर डेली हर दिन अगर आप मान के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा तो 6 महीना कितना हो गया घंटा 180 तो हो गया नहीं हुआ तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते 1 घंटा कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं है तो आपकी मार्क्स जो आएंगे आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी आपकी जो आईएएस आईपीएस बनना है सब बन सकते हैं लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा असंभव इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं

माँ बाप को एक काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा? पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते? मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना? क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो। जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा, और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते? कम से कम कोई तो मार्क्स आए। अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे? अरे मेरा बेटा 95% आ गया। अभी है कोई यहाँ 95% के, 100% के, 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से एक दो तीन दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा। पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट वी हैव ज्ञान पुत्र प्रोग्राम हियर, वी हैव ऑल्सो आवर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुदेव वी हैव योगा प्रोग्राम्स हियर, एंड वी हैव many our students from west who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time, and this is just that to see that learning never ends, and learning comprises also of the physical part which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with Swamiji's teachings of Ramayana, Mahabharata, and other Upanishads. So definitely, we are open university, we are open school. Of course, it's very difficult for many of us to get a visa, but still it's possible. So on this occasion of Guru Purnima, I would like to thank to our dear Gurudev, Vishwaguruji, Vishwaguru Swami Maheshwaran Puriji Maharaj, who gave us this opportunity, who gave us this ashram and this possibility to study Indian culture, to study the yoga, and to study old ancient traditions. With these words, I would like to finish, and I would still like to thank to all of you who came. I would like to thank to all of you who are donating and who wants to donate either by work and so on. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।

Good. Thank you. Thank you and main hunyo. Thank you. And you see the all vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now only the hamare gurukul ke bacche jo hai turn to the camera side. Muh dekho, dusre log nahi. Only the vidyarthi turn to the, don't go close to the bhir, chela nahi dikhega beta. Tu idhar se khada ho ja. बस बेटा यहीं खड़े होके दे या नजदीक आ जाए बस ओके वी विल सी इफ व्हेन इज देवेश्वर महादेव की जय अलकपुरी जी महादेव की जय हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की ओम शांति शांति शांति ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिव उर्वारुकम्येव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीर्मां मृत्यु

मैं सब मेरी तरफ झुक आज देख लो, इस कैमरा में देखो, दिख रहे हो तुम लोग? तुम दिख रहे हो? पीछे ये खड़े हैं, बैठ जाओ बस, थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद। दिख रहे हैं सभी के? नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊँगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के जरिए।